0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

माइंडेड डोंट एंग्री मी माइंडेड अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है कोई योगराज को मैं ही सिखाता है वो घर पे आता है